0: deu cianto.
1: पत्ता टूटे डार से ले गए फोन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से, ये दुख हमसे सहा न जाए।